नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंसर को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक बनी र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: स्वदेश FM 92.2 MHz
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन CMC हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 77 061 र 98 550 77 053
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4935 80 र 98 550 26 440
4: It's 6 o'clock अहिले 6 बजेको छ

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7070 र 98 550 7070
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4935 80 र 98 550 2640
3: It's 9 o'clock. अहिले 9 बजेको छ.
4: Hello, Radio Network.
5: अहिले बिहानको 9 बज्यो.
6: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो.
5: राष्ट्रको शान किसान.
6: A complete piping solutions.

0: आपकी वॉलेट माँ।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता माँ वहाँ 45,000 भन्दा बड़ी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफंत को हाथ हाथ माँ पुर्याउन आईएमई करूँ।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास
0: आईएमई करूँ।

0: सूचक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4395 80 र 98 550 2640
0: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।

0: अस्पताल को सेवा अब अपने सुविधा संपन्न भवन भरतपुर 11 बाईपास रोड
1: चौबीस घंटा वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती तथा स्त्री रोग सेवा
2: शल्य चिकित्सा पेट छाती सुगर थायराइड एवं मुटु रोग सहित को आईसीयू सेवा
1: एनआईसीयू पीआईसीयू सहित को बाल रोग विशेषज्ञ सेवा 4D वीडियो एक्सरे द्वारा बच्चा को संपूर्ण अंग तथा रोग देखना सकिने
2: मेरुदंड तथा जोर्नी प्रत्यारोपण सहित को हाड जोर्नी सेवा ईईजी ईसीटी सहित को मनोरोग सेवा
1: यूरोलोजी मा एमसीएस गर्नु भएका विशेषज्ञ द्वारा सेवा
2: प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी उपचार सेवा
3: मौला कालिका अस्पताल भरतपुर 11 बाईपास रोड फोन 0564397738 मोबाइल 9855088002
4: क्यामेरामैन खसेछ हेत्तेरिका हात खुट्टा दुवै भाँचे जस्तो छ ल होस पनि छैन ल ल ल तुरुन्तै काठमाडौँ लानु पर्यो हेलिकप्टर चार्टर गरेर मगाइहाल त
5: दीपक
4: किन
5: अब चितवनमा बिरामी पर्दा चोटपटक लाग्दा त्यसरी आत्तिहाल्नु पर्छ र वर्षौँदेखि

0: हेपिन के मेरो छोरालाई
1: गीता हेप्न पाइन्छ
0: रोड्दा नि
2: बारिस के हो हल्का ग्यास्ट्रिक
0: उज्जा मुर्दार
3: तिमीलाई
4: राम्रो मान्छे।

0: हेपिन के मेरो छोरालाई
1: गीता हातमा पाइन्छ
0: रोटा नि बाडिस के
2: हल्का ग्यास्ट्रिक
0: उज्जा मुर्दार
3: तुमलाई गो
4: हा राम्रो मान्छे भेटाउली जानी भेटाउँदिनौ मैले।